श्रोतेओ नमस्कार। हरिभक्ति परायण श्री गुरु धुंडा महाराज देगलूरकर विरचित नारद भक्ति सूत्र विवरण या ग्रंथाचं क्रमशः वाचन। प्रकाशक हरिभक्ति परायण भानुदास महाराज देगलूरकर, धुंडा महाराज मठ, उत्पाद गल्ली, पंढरपूर। वाचक ऋषिकेश अयाचित। ही वाचन सेवा हरिभक्ति परायण श्री गुरु चैतन्य महाराज देगलूरकर यांच्या अनुमतीनं आणि कृपाशीर्वादानं सालंकृत।

0: गीदड़ जी ने लीडर बनकर झाड़ी इस तकरीर, अखबारों में छप गई तोता मैना की तस्वीर।
1: फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ,

जाना के हाँ हाँ और सुनो और सुनो। हाँ एक एक परी थी। क्या? एक परी थी, तोता परी। हंसी वो बड़ी थी, हंसी वो बड़ी थी। गगन देश था उसका। क्या? गगन देश था उसका, अजब भेष था उसका। चले रात आगे, चले रात आगे, सुनो सुनो बात आगे, सुनो सुनो सुनो तो, अरे अरे सुनो तो। हाँ।

ये तो अरे अरे अरे ये तो फिर सो गई। अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है? कोई है? कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम? हैं, जाग गई? और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ।

0: या गिरनी स्वरूप लैन्या रे, या गिरनी स्वरूप लैन्या रे, कस तळतन वाटत या प्यार
1: ए, ए, ए, इकड़े ये

0: अरे हमसे बचता नहीं मुजरिम, ये सभी जानते हैं।
1: अच्छा तो सुनिए, ओ कौन है मुजरिम, कौन है मुझे?

है सब ऐसे बंदे, इनकी गर्दन ओए इनकी गर्दन नापेंगे एक दिन कानून के फंदे।

दोस्तों, जहन के किसी कोने से तांक झांक कर रही हैं कुछ ऐसी गजलें जो आप ही नहीं मैं भी भूल चुका हूं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इन्हें सुना भी ना हो, क्योंकि ये HMV का वो खजाना है जो आज से 25 साल पहले अलग अलग EPs पर रिलीज हुआ था।

फिर मुझे वो जलवा दिखा, फिर से एक दफा मुस्कुरा, फिर से मुझ पे बिजली गिरा। अब तो आ अभी जा, अब तो आ अभी जा अभी जा।

मस्त मस्त तेरी शोखियां, जुल्फ की ये काली बदलियां, ले उड़ेंगी ये आंधियां, दिल मेरा वो गया, दिल मेरा वो गया, वो गया। ओ मेरी बेबी डॉल, आया ना अरे कुछ तो बोल, ओ मेरी बेबी डॉल, आया ना अरे कुछ तो बोल, दिल की बात मेरे दिल की बात मेरे दिल की बात सुन गया, दिल की बात मेरे दिल की बात मेरे दिल की बात सुन गया।

तुमने अपनी आवाज वाली को पार, तुम्हारे खोए हुए सर्च में वापस मिली। हाँ आज देवी माँ से कुछ और भी मांगते थे। गाओ गोपाल गाओ, कितनो जीवन की पसंद पार।

0: वो दिन गए जब तुम्हारा जादू सर पे चढ़कर बोला करता था।
1: जानती हूँ, पर क्या करूँ सरकार, उस मुए जोशी के लड़के ने ना जाने क्या कर दिया है। गोपी तो किसी के परवाह ही नहीं करती।
2: मलैया जाओ और नरसिंह जोशी से कहो कि अपने बेटे को समझा ले, नहीं तो हम ऐसी कमंद फेंकेंगे जिसमें बाप और बेटे दोनों झगड़े चले आएंगे।
0: जो सरकार,
3: अरे कहाँ भर के यह सुनती नहीं। ओ गोपाल की माँ,
1: क्या बात है जी?
3: हम लुट गए हैं, हमारा सर्वनाश हो गया है और तू पूछती है कि क्या बात है जी।
1: हाय राम, कुछ कहो तो पता चले।
3: अब कहने के लिए रह क्या गया है, ये पिछल पैरा कुंडली इसकी इधर को जाती है और वो उधर को जाता है। मैं ज्योतिषविद का माना हुआ पंडित, इसने मेरे सितारों का हिसाब भी गलत कर दिया है।
1: गोपाल की बात कर रहे हो?
3: और क्या, मैं अपने बाप की बात कर रहा हूँ। तेरे इस लाडले ने हमें कहीं का नहीं रहने दिया और तो सब कुछ किया तो किया, अब एक नाची से इश्क भगाने लगा है।
1: चांद पर मत थूको, मेरा लाल ऐसा नहीं है।
3: बाहर निकलो तो जानो, लोग अंत शंत बातें कर रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं। अब इस लड़के का हाथ गले तक ही नहीं, सर तक आ पहुंचा। इसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। लोग तो अब यहाँ तक कहते हैं कि मैं तुम्हें भी ब्याह कर नहीं लाया, भगा कर लाया हूँ।
1: भगवान, तो फिर क्या करें? लोगों की जबान थोड़ी ही पकड़ी जा सकती है।
3: हम उनकी जबान नहीं पकड़ सकते, वो भले हमारी टांग पकड़ लें, पगड़ी उछाल दें, इसने तो जोशी कुल का नाम दबो दिया है। कोई यहाँ तक नहीं टिकता, सबके सब बाप दादा और लकड़ दादा तक पहुँच रहे हैं और ये सब दोस्त तुम्हारा है।
1: मेरा दोस्त कैसे हो सकता है?
3: तुमने तो जल्दी की, अगर दो घंटे इसे देश से जनती तो इसकी कुंडली ही बदल गई होती, लगन बदल गया होता।
4: अगं देविका, माझ्या एका मैत्रिणीला ना गृहउद्योग सुरू करायचा होता, पण तिला त्यासाठी कर्ज मिळत नाहीये। अगं इतकंच ना, मी सांगते बघ, आपली विश्वास बँक आता 10 लाखाच्या पुढे 25 लाखापर्यंत कर्जावरती 11% दरानं व्याज दर देते। खरं की काय? आणि शिवाय प्रोसेसिंग फी फक्त 0.75%। अरे वा, ही तर खूपच आनंदाची बातमी आहे, मी आजच तिला कळवते। नक्की कळव। याबरोबरच इतर अनेक प्रकारची कर्ज सुद्धा आपल्या विश्वास बँकेमध्ये उपलब्ध। अधिक माहितीसाठी जरूर संपर्क साधा गणेश सोममोशी 8300 10876 आणि कल्पेश आचट 8300 16406 या क्रमांकावर।